आकाशवाणी इम्फाल ngasi मेगितांग कुंतरुक लेबागबुक पनुमित इंग्लिसिंगनी कुंतरुक इंगागितरानी पानबा सकाप्तलिसिंगमा चमापलनी फुनिपाल हौजिक अयुकिपुंग मंगामखाई ताकिबगलुइनना संगाई चनल किथौरम संदोकपा हुजुरी संदोकचरिबा मेगहस चामा अहुम दशमिक मंगा थौरम ताबिरिबसिंगबु तराम नोकचरी खुरुमचरी

अरुण मथौर रमता भी रिबासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दिगिने हाउसिक चैनल से दा नसी नोंग मगी थमजरी बा थौरम सिंह निंगसिंग जरी अयुक पुंग तरुक मिनट तरा लांतोक चगनी सीधे हिदाग नसी की सीधे हिदाग ते थमजरी बा हिरमना खौड़ी पोंबा फनन बा योग अयुक पुंग तरुक मिनट तरा मंगा लेबाक निंग बा इसे यानी खक तहान जगनी पुंग तरुक मिनट कुन मंगा थमजरी मतमिशे अयुक पुंग तरुक मिनट निफु ताबु मतम दा तहान जगनी रेडियो क्लास चनी के हुम्फु तरा मापल शुभ दांकक दा क्लास एट मणिपुरी लाइडिक लाइसु की लेसन तरेत येलम्मु नुंशिबा थौरम से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंबांग लुइनना संदोकचब थौरमनी थौरम से तहान जरब मतुम मतमिशै फंगबिगनी अयुक पुंग तरेत संदोकचगनी खोंजल नाचुम नसिगी नाचुम द थमजरी साइंस मैगजीन अयीबा डॉक्टर मयंग लंबम अजित कुमार थौरम लांतुक पिगदबा लंगपोक लाकपम लेशना थौरम पुथुकपा रायचंद चिंगथा अयुक पुंग तरित मिनिट निफु लांतुक चगनी अतुप मंगालदा महि मसिंगिलमदा म्यूजियम गि थौदांग हाइब हिरमसिगि मतांगदा लोंगजम लिलिचा असिस्टेंट क्यूरेटर कंगला म्यूजियम इम्फालगा उनदुना वरिशाबा अरोइब सरुक उनबिगदबा केनी कोंखाम थौरम पुथुकपा थौकचोम रेनुबला अयुक पुंग नेपाल ताप मतमदा नाहारुगी खोंजोल थौरम सनुकचुगनी थौरम मसिद थमजरी होंगलक्तिबा मणिपुरी सिनेमागी मसक असिदा नाहासिंग हाइबहिरमसिकी मतांगदा फिल्म मेकर ओसी मेरागा उनदुना वरिशाबा उनबिगदबी गौरी हाउबम

0: श्रीमती संजनवं भानुमति देवी मणिपुरी साहित्य की लम्द थोदोंगना छेरिंग इबी कवि ओइना मियामना खंगनरी बी अमनी कुमली सिंगम का समापन मरफुनी थोदगी दिसिंगनी का तरामा थोई फावगी मनुंग महांगनी इबा छेरिंग सिंगी खमजिन बलाइरी मंगा फोंग्रे अदु महांगना रस्किन बोन गिम द ब्लड ऑफ द पिजन हाइबलाइरिक अदु मणिपुरी रोंदा खुनु सिंगलान जेन हैन हंडोक्तुन फोंखी बगिदमक साहित्य एकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड फंखी महाक खागेमपली पनखा गाना पिथोंग इम्फाल द श्री लाइश्रम दबलोगी लोइनबी ओइना लेरम लगा ताइबंग पाल थादोख्रबीने
1: ओजागी सिनफम द लेरमबी भानुमती आंगांग सिंगबु मरु ओइना महेरो सिंगबु लुना खंजबिनी इसाई नोंमाई की लमदसु थवाई आउजखी मणिपुरी मनोहर साई साई सक्ता ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल के एप्रूव आर्टिस्ट अमसुनी ताइबंग पुंसी सेंजेन तेन खिबना महा की साई सक अमतंग फावा रेकॉर्ड तौरंबा नंग खिद्रे इशोर द थाजबी आई बी असिना ताइबंग पान सिदा लेरिबा मीओइबा मरकता नुंसी चाना ना हिंगमिनबा की मंग मंग जखिबिनी महा की साइरिंग सिदा मसी की ममी निंथिना तारी
0: आंग सिंगबु नुंसी खिबी कवि यसिना आंग ना पाजब याब लाइरिक तसु खुट थारमी कल्लवी गोपाल कृष्णन तमिल लोंद इबदगी इंदिर अनंत कृष्णन इंग्राजी रहंदोप मधुदगी अमुक श्रीमती भानुमती ना मणिपुरी लोंद अपाइब लाइथी हैर मिंग थोंदुना आंग सिंग ना पाजनब अतेन वरी अमसु फोंबीरमी कवि यसिना इरंब छेरें सिंगि मरकतगी येलमु नुंसीबा हैन मिंगथोन बसेरेंग सिमक्सु अंगांग सिंग ना कानगद बसेरोल अमने
2: माले मनुंग द लैता खिबा पिकलब मरु कयाना मना मसा लोंग लबा निंगथी ब पामबी ओइदुना ताइबंग द कानब फंगहली सखथी सओंग अतोल अता खाक पलैत नुंगाई हली निंथीब उहै पीदुना ताइबंग मपु पेलहली थारुब कौब लैतना कुमजा कुमजा गा चानना सिंगे लैरांग कयाना माले मयोन नुंगदगी नोकमी नोकमी पोमबोमना तपन लैसा तमलकली नुंसीब लैनम पामुना थुपजानना थमदेदो हेक्तो खिनी कीदुना मागी लैनम लोटदेदो मिंग लब थाबल की मंगाल ना मफम खुदिंग संदोकली लाइर बगी खांगपोकनी मंगाल चायरोय हायरमदे लमजावैबा मकानी हन्न येंगद चतखिदे अमोट अकाय लैफमनी ना कोइना न थनमदे लाइर खांगपोक अहोबदा लिसिनदुना मंगालुइ ताइबंग पुंसी की फमबागती खेनब लैते मौतली मागी नंगी आईगी हाइना मापान थोंग द खाइबनी मनुंग द दी करीसु खेना बबू लैते दो मागी सुलै जै थमोई मा नंगी आईगी सु अदु मंगाई थमोई ग तिनना नुंगशी ब येलमु ताइबंग द नुंगशी ब याव द्रब महाक्ती हिंजमन गी कानद्रे
0: कवि छंजेंबम भानुमति मौसा लाइरेंबी मसाई कोल्द लेरिब लेंगली पालिब पोलम खिबिक असिबु खंगननब होनखिब मिशक अमनी महावना सिगुम पोलम कया असिना अमन अमगी मतें पांगनरिब कयाबु उशिनब गंबगी मथकता पामबी की ताइबंगु मसक मुन्न खंखी ताइबंग मीओइबना थवोइन थारुदब पामबी सिंग मालेम लैशादगे करमन हौरप अमदी कनाद कानब पीबगे हाइबदो सैथारम्मे असुमना
1: माले मनुंग द लैता खिबा पिकलब मरु कयाना मना मसा लोंग लबा निंथिब पामबी ओइदुना ताइबंग द कानब फंगहली सखथि सओंग अतोल अता खाक पलैतन नुंगाई हली निंथिब उहै पीदुना ताइबंग मपु पेलहली
0: मालेम लैसा लेरो नुंगदगी मखल मखागी पांबी की मरु न हौरप लगा मसामरिंग लोंगबा 아쇼바 마풍 파브 우팔 오에리 하이리바 팜비 싱아시 람기 셰클라 카야기 샤이랑팜 오헬리 샤르바 농샤기 마샤락타 우룸피리 우카다 마헤이 반바 우팔 싱기 우헤이나 미오이베테나타나 팜비 셰클라 카야다 마푹 탄나 피저리
1: 카나기 마팅 야우다나 마풍 마레이 파락라바 팜비 싱나 타이벙 판다 힝리바 타와이 판바 싱다 마사기니 하이바 카리마타 카호다나 피토이 카토이 아숨나 카톡파 피톡파 마탐다 마삭 파자바 아티바 라이다 이나 쿤바 라이다 아톨 타라바 하이바 마 카이독 루바 타우다나 아카악 팔레이타나 누가이바 피리 아숨나 우하이 판바 우팔 싱나 타이벙 판다 레이리바 타와이 판바 싱부 펠할리 아시곰바 타옹 아시 링 옷방암리바 와칼 칸방암리바 미오이바 에코이부 칸한닝바 마타우 타만닝바나 카비에 시나 사이타람바 오이가니
0: 카비나 우람리바 영람리바 시 타이벙 미오이바나 타오이나 시엠 차르바 헤콜레콜 싱다 호

0: खंगन जबामा आकाशवाणी फल्की म्यूजिक ऑडिशन की दमक ऑनलाइन की कुथांगदा फॉर्म थाजिन के बसिंगदा खंगन जरी मरुदी बीरगी बी हाई ग्रेड कानब की ऑडिशन लाखली बजुन की तांग नेपाल दगी हौजरगनी मे कुन मापन फाउब की मनुंगदा इंडियन म्यूजिक सेक्शन दगी अयुकी पुंग तरामथोइदगी नुंथुल की पुंग मरी फाउब की मनुंगदा एडमिट कार्ड लोबिरनबा खंगन जरी आकाशवाणी इंफाल हौजिक अयुकी पुंग तरित मखाई तारे मणिपुरी दा पाउ ताबिरसी
1: आकाशवाणी इंफाल माइबम दिजमनी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुवेबा पाउ नगागी मियोय तरुक फासन खिबा अदुगी मरी मखों खंगनबा सिक्योरिटी फोर्स न पाक सन थेबु हुमगी थाबक सथरी सिक्योरिटी फोर्स न इंफाल ईस्ट गी लालोलुप अहुम गी कादर अहुम फारे अमसुंग लेबा गसिदा पेट्रोलियम गी पोथोक सिंग निंथी न फंगनबा सरकार न अकनब थाबक लोकली कांगपोक्पी जिला की लैलोन वाइफेदी नगा की मियोय तरुक फाजन की मरी मखों खंगनबा सिक्योरिटी फोर्स न पाक सन थी बुहम की थाबक चथरी मणिपुर पुलिस की कंट्रोल रूम न थोप चेरोल अमन है मणिपुर पुलिस सीआरपीएफ आसाम राइफल्स की अपुन कांगबुना पी मोल्डिंग लैलोन वाइफे फाउनब लंबी मियोय फाबद चेनरब चिंब मियोय मरी फारे फारब मियोय कांगपोक्पी जिला दा खुलाई पायरग सतो चचिन तौब विलेज वोलंटियर मखोई नमदुना सेल खाइब आईन यादब मोंग खुजु खुलाई पुथोप तौब हक्थेंगना चेनी हैरी मखोई की मतक वाहुं पाहुं तौब की थाबक चथरी सिक्योरिटी फोर्स न राइज तमगी सिंगब मफम सिंग पाक सन थी बुहम की थाबक चथरी सिक्योरिटी फोर्स न इंफाल ईस्ट की यायंग पोक्पी पुलिस स्टेशन कोनब सैजांग अवांग लेकाई लालोलुप मियोय फाखी जिला असम की हैंगांग पुलिस स्टेशन कोनब खाबई सोय साबल लेकाई लालोब मयूद फाखी मंगोंद मोबाइल फोन फंगले अमरोंदा सिक्योरिटी फोर्स न इंफाल ईस्ट जिला की पांगई नेपाली बस्ती लालोब फागटखी मंगोंदगी मोबाइल फोन अनी फंगमंगमले इंफाल की ट्रेजरी ऑफिस की गाड़ी मचा हुरान मियोय मणिपुर पुलिस ना थौबाल जिला की यारीपोक कैसाम लेकाई फारे नहा सिंग पुलिस की थाबक थोरम सिंग निंथी खंगनब की पांदमदा नो योर पुलिस स्टेशन हाइब थोरम इरिलबुंग पुलिस स्टेशन पांथोख्रे थोरम इरिलबुंग हाई स्कूल पायोनियर एकादमी की क्लास आईट की टेन फौब की महीरो सरुक याखी नेशनल हाईवे 38 इंफाल जिरीबाम लंबी पोचई थन याब गाड़ी चहुम हूंब्रानी सिक्योरिटी की अकनबल थौरंग इंफाल पुथोरखे लंबी असद असो इंगाम थोतना गाड़ी चतो चचिन यहाब सिक्योरिटी फोर्स अकनब थाबक लौखली सिंगब मफम सिंग सिक्योरिटी की कन्वोय मतिक चा थमले।

ताबिरिबासी आकाशवाणी फल्की एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक ताबिरिसी अतोपा मंगालदा महै मसिंगिलमदा म्यूजियम गि थौडांग हाइबिरमसिगि मतांगदा लोंगजम लिलिचा असिस्टेंट क्यूरेटर कंगला म्यूजियम इम्फालगा उनादुना वारिशाबा अरोइबसरुक उनाबिरिबा केनी कोंखाम थौरम पुथोकबा थोकचोम रेनुबला

ताबिरिबा से मेघहस चामा अहम दशमिक मंगारे संदक चरिबा आकाशवाणी फल के एफएम संगाई चैनल देगिनी हाउसिक ताबिरिबा सिंगी दमक लांथोक चरी गीत गीत खुदोल के अहन बदा लोबिरसी अरिजीत सिंह मदी चिन्मायी

0: चल फगनी अम्बू
1: मनो इमगो
0: बोर बोर वा
1: अकोन में समु मया ओन में लूबनी
0: करी
1: सोयर बदी ओली बमी अजुदा दिक्षिन हंजन का दौड़ी बनी
0: करी है बा बोर बोर वा
1: इन्हें थो फगनी ननाई थोल तोक जगे समु मया सांग बत्तियन बन ननाई ए यंग जगे
2: निंग थोरे गेंदे लागी वापम से ताजा बीगनो अशिगु मुआफम नोमात ताकिदे
3: करी मया सांग मना दबा मसी बोई थो कदने इनिंग थो मियोई बाई कोई दसु खुद सांग बमाना दबा कोंग सांग बमाना दबा कया मयावी मसीबु पत्ता बखुदम कोगदरने इनिंग थो
1: येंग बियो निंग थोरेल कया दलु नम चोरी बना येंग बियो निंग थोरेल इनिंग थोगी सम सम जब थमो ये सिना नौ मदिया होमलाई पाग मिखा पोन गनी सोइना एवं सामु परक्तना लेपाग अश्वले खाता न बताऊरी बा मरण रागोबु सयोग पीर दबनी
0: बोर बोरवा
1: इन थों न नाई थोगल चोक जगे कराली मैं घूस आई पिरु कराई
0: है
1: है मिनाई मच्छा न थोए तो मनिंग द्रवदे इन थों दलाले हम बच्चों
3: तक पीरो अंबा मफ़म मसे राज दरबानी मैं भूसंग नते इपासत लबांगंबा नमोम्सु सना कोनुंग द चाऊजरे असीगुंब थाउदाउदी मैताई कोनुंग द ताऊजदे
1: कुरंगने ने
0: कृष्ण चंद्रा
1: इनिंग थाउ
0: सेराक मखातोलो शानुक्तोन
4: यम्बु
0: मोरान रागोबु मयुम पाव तेंबी क्रो
4: भगनी यम्बु
2: लर्मिसिंग मनाओ इबुंगो
0: मोरान रागोबु सगोल गारिये सिर थागलो चलो भगनी मनाओ इबुंगो
1: सेराक से आई खंतगी नते लेपाग सिगी आई थनबनी अरान बपुया इशिन मसिंगो आई खंग तुनमई थागनी फंबाल कन बहाइबसी आई वा सपनी
0: कृति चंद्रा
1: इनिंग थौ
0: फंबाल की दमक तमियोय बिगी लिसत्ती मांगल लोय दबनी मी मसेल नुक्सिन दब मफमदा फंबाल मत लेप तुन लैब ngam लोय अंग मथौ पम नमक नसी गदी दरबार मतांग असिदा लोय सेले
5: भाग

हजुर, म फमसिदा थरमता बिरिबा सिंगिदा मक्ता बुदुना लाक्चेरी गुड आफ्टरनून लेडिस। थरमसिदा लमदमसिगी लिपियोबि सिंगना खगी टेलीफोन नंबर 8798803293 अमुक तंगा हना निसिंग जगे 8798803293 नंबर सिदा फोन तो बिरतुना लमदमसिगी ओइबा जाखत थरमगी ओइबा इसाना करी करी थौदांग लबिरि लोइना ना मयाम पुन्ना तमीनबा वफम सिंह फोंदोपीरकनबा मफम हाईजरी खोगी टेलीफोन नंबर अमुक्त हना निशिंगजगे 8798803293 अदोंगी फोन कॉल नाइजरी।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून कन आई बी रेवन मिंग लेफ हम है बी ओ निर्मला से मैं इम्फाल देगी निर्मला तराम नोक चरी करी करम बवा फम नो फुंग तुपी दोई से है बी ओ
1: रेडियो दुसु करना एडवर्टाइज तो बोलन दाई एजुकेशन जी मतान ना बताए बा के दल एजुकेशन जी
0: होय होय हैबी
1: अब तो कोने बोलन दाई टीचर को ओय ओय निंदो या पाम बत जुलाई बा तो हाय हेन बा तमन तमन तो वो तो बतिए को कमाई तो के तंग इन्फॉर्मेशन ओ डिटेल ओय न खंग या न बलंबी ले के तंग
0: मसीह मतांग से दिया कोई गसु है बढ़िया कोई दिया एडवर्टाइजमेंट तो जब गुंबा दुगुंबा खर खकता निको अमरी लाइन बच डिपार्टमेंट सिंह द चल लगा हम भी बने हैं न पगने को निर्मला तो पवा फम ले रहा दी फंटो पीना बाहर जरे ना
1: मैं ना है जनिंग बती कोई इमंग मनों अधिक लेकाई अधिक हागई अमा
0: निर्मला की मनाकता रेडियो लाई बता रहा गदी खजिक तंग लाथो पिरक न बाहाय जरी को मनिंग द इको खजिक तंग थो एबत नुगाय जदे ता बद निर्मला खोंजेल से हैव यू मखा ता बियो निर्मला
1: ता बियो
0: ता जरे ता जरे हैव यू
1: कोई मेकाय मा थामा समा थाबे यम तो खत दन बियो जी जी ओगा जंग जाओ वन खन जेई बा
0: Have you?
1: I think I'm going to send the video, but if you like any more power, so worry to send us a negative talking. I am away. I don't know. Kara positive from the in general, I never had any tea.
0: Tapa wakal kanggadori pa no adun nani imay pa halaman singna larik lai su pas na tamu punsi damay pa ke harabadi hay na yam na tuin na hay biba wafang mamalay pa do nirmala takacari nirmala nga sige oy na di akoy gitaro masida kol daw birak pa makata ba isi makatang kudol tamjarake kudol tamjari ba isi isi hingbagi mahaw filmastegi sundari mahisur amadi jachegi apun bakonjal da jitendra ningomba da saringba amadi rabay kaisam chana Serang bisa ini saya kudul tamjari, tak bisa.

0: हेलो हेलो
1: हेलो थाकचेरी
0: के नॉइज़ भी रफ़नो मिंगले फ़ोन तक पियो
1: पाँचवी
0: है भी ब्रा होय सांतिबला बोए क्योंकि थरों मसीदा तरंग ना उपचेरी सांतिबला क्योंकि थरों मसीदा सरोग अभी रख पा क्या रख का जिसूर गे इसागी वफ़ मखा ताबी ना वही जरी यम सान उबा वफम निको सांतिबलाने पुखत पिरे इबसे ट्रैफिक जाम सु खरम मखै अदु खरम मखै दनदि अदु मख थोहलोय हाइन सु खनजै को ट्रैफिक जाम गैका ओरिबा मेमसे अदुना थाइनदि अखैगि पिकलिङै मतमदा साइकल से मु खुदिङि लैनारमेबा अमन नत्रगा अनि अहुम दे दुम स्कूल गाबदन खंगदे मदनि खंगदे दुम थौर थौरगा दुम चनरामिनेबा अदु बहौजिकति लंबी थोंसि सु यामना चिनखलपना मरम ओइरगा साइकल थौहलगा मचामसु सिंगसे स्कूल थाबसु किनर एको किनर फन सुमरम ओइरगा वेन नचिंगबा अदु ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀꯥꯔꯗꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛꯅ ꯆꯤꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤꯕꯂꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯩꯈꯨꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯍꯟꯊꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯥꯖꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯟꯀꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯁꯦꯐ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤꯀꯣ ꯁꯥꯟꯇꯤꯕꯂꯥ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯐꯅ ꯆꯤꯜꯂꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯕꯂꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯨꯒꯤ ꯃꯣꯟꯗ꯭ꯔꯪ ꯐꯤꯜꯃꯁꯇꯒꯤ

ऐसे ऐसे गलो ना गुड आफ्टरनून लेडी संदोक चबा मतांग सलोजरे ऐसे की ट्रांसमिशन नसे उपोबीरी बा इंजीनियर सिंह दी लाइस्रम रोशित आमदी सरत चंद्रा ट्रांसमिशन नसे उपोबीरी बा स्टाफ ना माइबम सीमा चनु ऐसे के खोगी थरम ऐसे दा टेलीफोन तो बिरक्तु ना थरम सरोग या बिखे बा थरम ऐसे बु हो बुदेगी लोय भाव बता बिदु ना थरम ऐसे बु मपुम पान बिखे बा मैं हम पुम ना मके मफाम दा अमुका हाना लोरिम बम टूरिस्ट ना थाकत चबा फंग दुक चली

दोस्तों, आज गीतमाला में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो सुना जाए कार्यक्रम का पहला गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया अनु मलिक ने।

कार्यक्रम में पेश है अगला गीत, दिल है तुम्हारा फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर का लिखा हुआ और नदीम श्रवण का संगीत।

संगाई चैनल में प्रसारित गीतमाला कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे फिल्म संगीत। सुनते हैं अगला गीत, इश्क इन पेरिस फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है सुनीति चौहान और सोनू निगम ने। कौसुर मुनीर की शब्द रचना है और साजिद वाजिद का संगीत।

सुनते हैं अगला गीत कोई मिल गया फिल्म से, केएस चित्रा और उदित नारायण की आवाजों में, गीतकार इब्राहिम अश्क और संगीतकार राजेश रोशन।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुनेंगे फिल्म सोल्जर से अलका याग्निक की आवाज में। बोल समीर के हैं और संगीत अनु मलिक का।

मथंग दमुक ताबिरसी इरांग फिल्म मस्ते की पुष्परानी की नाइटम खोंजल दा मोइरांग थेम इबो पिछक ना सेरिंग बमदी आर के बिरेंद्र जितना सेरांग बेसी

0: अगर था दोरो ओ वे दिन इपा हाई की ए नबुंग जे ऑफिस का दोरो माने थोले ने है लाओ लाओ लाओ लाओ इमुंग ने चंगो
1: ए नबु यार सिटी कई लोग कई लोग कई लोग लोग पे बाम सिकेनो हां न कोई ने फोटो को पन्ना नम जलगा आई वो ने बिल यो सिकेनो हां सुन यार लियो करी आई की नहीं थक तो ऑफिस में आम लेडी और नेवर मिस सुन ले कई लोग ने कोई बाम से हां आई
2: 你弄几杆子杆子，
1: 我也把你这杆子弄，哎，把钱都给他偷了。
3: Sorry。

콩강이 더우름 따위리 더우름 산독두나 따한절이 바세 아카스바니 임팔기 강라 채널다기니 강한저와 아카스바니 임팔기 뮤직 오디션기 더막 온라인기 코당다 폼 타진 비키바싱다 강한저리 마두디 비더기 비 하이그레드 카나나바기 오디션 라클리바준기 땅 니판다기 허우저러가니 메 쿤가마판 파워기 만웅다 인디언 뮤직 섹션다기 아유키 퐁타라 마토이다기 능틸기 퐁머리 파워기 만웅다 엔밋 카트 라위르나와 강한저리 강한저와 로저레 사타저리바 타우람 버랭아시기 누미당 퐁니판 마호사곰 탐저리 레디오 릴라 나시기 레디오 릴라다 란톡주가니 우타바 앙아오바 릴라하시기 아로이베서로 लीला सानबी गदबा खोरीफावा आर्टिस्ट एसोसिएशन की लीला कांगबो पुंगनीपान मखाई संदोक चगने नहारोल की खोंजेल नसेगी नहारोल की खोंजेल दा ताहन जगने नसी अमदी एकोगी एनवायरमेंट हाइबा हिरमसिदा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अमदी फिल्म मेकर जितेन जुमनांग उनदुना वारिसावा उनदुना वारिसावी गदबा राहुल हिदंग पुंग मापन मिनी तरा मंगा अबुजम याइफब मैते दगी खोनुंग इशै थमजरी मतमिशै सिंह तहांजगनी गसी नुमिदांग पुंग मापन मखाय पुंग तरा थामजोरी मयाम ना ताबिनिंग दुना एसएमएस अमदी पोस्टकार्ड के खुदांग दा खानबिरकबा ताबिनिंग बा फिल्म इशै सिंह मथंग मथंग ओइना हयंग एयुकी पुंग तरुक मिनी तरा लउ सिंगु की वाफम दा थामजोरी नोंजु थादा बॉयलर येन सिंह सेनाबा हयंग एयुकि पुंग तरु मखाई मतमिछै थमजरी हयंग सैसक पसिंग दी थियाम चाव सिंग व हेंगबम प्रेमिला देवी अमदी राजेंद्र तोयजम हयंग एयुकि पुंग तरे थमजरी खोंजेल नाचोम हयंग नाचोम दा ताहन जगनी माय पाकलबा लौमी थौरमसिदा ड्रैगन फ्रिट थाबदा माय पाकलब लौमी पोसंगबम संजय सिंह सिंग सिंगजमई चिंगामाखागा उनदुनावारी साबा उनदुनावारी साबिगदबा एमएम सनायाई थौरम पुथोकपा रायचंद चिंगथांग हैंग इउकी पुंग तरेत मिनि निम्फु नोट की खुदोलदा ताहन जगनी थोंगाम तोम सिंगना सकपनोट

0: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯒꯥ 103.5ꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯟꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯂꯝ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯁꯤ ꯑꯏꯕ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃ ꯈꯨꯃꯟ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ
1: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯥꯛ ꯄꯥꯛ ꯇꯥꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯦ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯚꯥꯌꯣꯂꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒ꿤 ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯗ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯥꯛ ꯄꯥꯛ ꯇꯥꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯚꯥꯌꯣꯂꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯊꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗꯇ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯀꯌꯥꯔꯛꯇ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯈꯨꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯇꯥꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯈꯨꯖꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯅ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯕꯨ ꯁꯤꯡꯗꯔꯛꯂꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯗ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯈꯛꯇꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ US$ billion 20ꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯥ ꯆꯦꯠꯄꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ 35ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯈꯛꯇꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯂꯤꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯇꯥꯅꯅꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯦ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯝꯊꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯇꯤꯜꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯎꯔꯛꯂꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯕꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯡꯇꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯂꯒ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯇꯩꯕꯨ ꯅꯝꯊꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯁꯦꯝꯂꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯝꯒꯤ ꯆꯥꯗ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯗ ꯍꯨꯝꯐꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯄꯥꯜ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯎꯡꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯌꯦꯜꯂꯛꯄ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1947ꯗꯒꯤ 2020 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 1,497,000 ꯎꯃꯪ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯄꯕꯨ ꯊꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯆꯥꯅꯗꯅ ꯈꯪꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯊꯥꯞ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯤꯡꯗꯔꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯈꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯦꯟ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯈꯤꯗꯕ ꯄꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯂꯦꯟꯒ ꯑꯃꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯂꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯀꯣꯔ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯄꯨꯟꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯂꯦꯟ ꯃꯨꯕꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯦꯁꯤꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 1,000,000 ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯂꯕ ꯍꯤꯠꯂꯔꯅ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯄꯥꯟ ꯃꯨꯕꯃꯦꯟ ꯑꯃꯇ ꯆꯍꯤ 1,000,000 ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ पान मुमेन की पुवारी से याखीब मतम अदुददि नहाक अतोप हितलर हाइबदी अपिकप हितलर ओइख्रबनी ग्रेटर मिजोरम ग्रेटर मितेइलेन ग्रेटर नागालेन ग्रेटर कुकीलेन की अपिकप हितलर ओइरुगनु मरमदी असौब हितलर अदु किंथख्रबनी अरानब थ्योरी तौगनु मणिपुर की थ्योरिटिशियन वाखल लेब सिंह असि हुमलग सकप याबगी मतम अदु यामनि हेनख्रबनी अदुना कैदौनुंगदा पान की थ्योरी अमुहन तौगनु अनकोट मथक्त पनख्रिब वाफम सिंह असिद युफम ओइरगा मणिपुर की मियाम कांगलुप मसल की उखनब ट्रांस बोर्डर की तंगदु लेतातब अमसुंग रीजनल जियोपॉलिटिक्स की अवाब कया मयौनरी अदुना लैंगांगना मणिपुरदा तंगदु लेताब हानगी फिबम द हजलेनब हाइबसी ख्वाइदिगी मरु ओइर लोबग लोइरना लेताब असी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 1 अमसुंग शेड्यूल 1 एंट्री 19 अमसुंग प्रिंसिपल्स ऑफ यूटी पोसिडेटिस जुरिस प्रिंसिपल द युफम ओइरगा अपुनबगी सक्तम सागलगा पुरकफम थोई
0: होजिकता बिरे मतम की वाफम द कांगलुप की लम सेम की वखल थादोक्सी अईब इबोयाइम खुमन सीनियर जर्नलिस्ट

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने। हर श्रृंगार में अर्पणा आप सभी का स्वागत करती है। प्यार भरा नमस्कार मेरा स्वीकार करें। वक्त हो गया है 10:31 और 17 सेकंड। तो चलिए आज का हर श्रृंगार शुरू करते हैं कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह की आवाज के साथ। सौदागर फिल्म से ये गीत आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर श्रृंगार आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ, कुछ सौदे ऐसे ही खूबसूरत होते हैं अगर बात हो दिल लेने और देने की। और बात ये हो रही है खुशियों की, क्योंकि मोहब्बत की बात है तो खुशियों की बात जरूर निकलेगी। मेरी हर खुशी का रास्ता तुम ही से होकर जाता है, मेरा हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे साथ ही मुस्कुराता है। तुम सिर्फ मेरे प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी का सुकून हो। इस दिल की हर एक धड़कन में तुम ही छिपे हो। अगला गीत धड़कन फिल्म से अभिजीत और अलका की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस तुम से शुरू और तुम पर ही खत्म है। जी हाँ, ये बातें तो कभी खत्म नहीं होती, ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है क्योंकि आप जुड़े रहते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के संग। आज आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार और हर श्रृंगार में मैं हूँ आपके साथ अर्पना। 10:46 और 40 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत एक बार फिर से अभिजीत की आवाज है, फिल्म का नाम है जोश।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज दामनी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, गीतों का असली जादू यही है कि गीत संगीत हमारे दिल की गहराइयों को आसान शब्दों में खूबसूरती से पेश कर देते हैं, और जब बात प्यार की हो तो ये रिश्ता और भी खास हो जाता है। प्यार को शब्दों में बांधना मुश्किल है, पर गीत उसे एहसास को बहुत ही आराम से गीतों से माध्यम से महसूस करवा देते हैं कि हमारे दिल में आखिरकार सामने वाले के लिए है क्या। फिलहाल वक्त हो गया है 10:51 नहीं 55 हो चुके हैं जनाब, तो लीजिए इसी के साथ 10:55:40 हो चुके हैं। अगला गीत होगा खूबसूरत फिल्म से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, और इस गीत के बाद आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर समाचार। 11:10 पर होगा गीत मेरे मन में, तो आपके संग रहूंगी मैं अर्पना। फिलहाल आप लीजिए इस गीत का आनंद और इसके बाद समाचार जरूर सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय के बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा

0: जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
0: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: The government of India is preparing to roll out anti-drone system for drones and similar aerial threat within the next 6 months. However, since these drones eventually land on Indian territories, we must remain highly vigilant about those who may use the materials carried by them for anti-national activities. Effective neutralization will require strong coordination with civil authorities and district police along with prompt and result-oriented action at every level.
0: परिणामलक्षी कार्यवाही
2: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. J. Shankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price MEPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना और वक्त हो गया है 11:11 आपने ट्यून इन किया हुआ है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ से ये तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं आनंद बख्शी के लिखे गीत के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है किशोर कुमार की आवाज में होगा ये गीत फिल्म का नाम है कर्ज और इसके बाद आप सुनेंगे इंदीवर का लिखा गीत राजेश रोशन का संगीत नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज में गीत होगा फिल्म का नाम है खून भरी मांग तो इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ गीत मेरे मनमीत में आज आपके साथ है अर्पना 11:11 और 40 सेकंड हो चुके हैं

मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11

बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

11:27 और 6 सेकंड हो चुके हैं. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. गीत मेरे मनमीत. अगले दो गीत जो है उनके बारे में आपको कुछ बता दूं. आनंद बख्शी का लिखा हुआ एक और गीत होगा. संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज है अनुराधा पौडवाल और मनर उदास की, और फिल्म का नाम है हीरो. और इसके बाद आप सुनेंगे अगला गीत. एक बार फिर से राजेश रोशन का संगीत होगा, इंदीवर के लिखे हुए बोल होंगे, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की होगी. फिल्म का नाम है कामचोर. इन दो फिल्मों से आप गीत सुनेंगे गीत मेरे मनमीत में.

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज अनगिनत आवाजें अनगिनत एहसास संगीत संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर हर आवाज में बसता है अपनापन
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:45 और 35 सेकंड हो चुके हैं। आज गीत मेरे मनमीत में आपके संग है अर्पना। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो है विशाल भारद्वाज का संगीत है, गुलजार के लिखे बोल है, लता जी की आवाज में होगा माचिस फिल्म से गीत, और इसके बाद होगा 1982 में आई फिल्म डायल 100 से गीत। कुमार इसके आवाज जो है वो है किशोर कुमार की है, महेंद्र कपूर ने इनका साथ दिया है, और इसके अलावा संगीत की बात करें तो संगीत है बप्पी लहरी का। तो आप इस गीत का आनंद लीजिए, दोनों गीतों का बल्कि मैं कहूंगी कि आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

जी हाँ दोस्तों, रात को नींद कैसे आ सकती है जब गीतों का ऐसा सिलसिला चल रहा हो आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला गीत आप सुनेंगे उत्सव फिल्म से लता जी और आशा जी की आवाज़ में होगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये संगीत है और इस खूबसूरत गीत के साथ ही अर्पणा को दे इजाज़त। उत्सव फिल्म के इस गीत के बाद आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अपना चाहेगी इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों

की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया। NIA के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण कर संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुसूचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 92 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज की रात आपके साथ मैं हूँ माधुरी। कार्यक्रम है निशिगंधा, जहाँ जिंदगी की हर धड़कन सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे जिंदगी की उस हकीकत की, जिससे रोज अंदर ही अंदर हम लड़ते हैं। बज़ाहिर हम दिखते खुश हैं, शायद हो भी, पर हम आज बात कर रहे हैं उस कश्मकश की जो हमें अपनों से दूर कर रही है, हमें अपने अपने अजनबी बना रही है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? अगर हैं तो जुड़ जाइए ना हमारे साथ, देखते हैं क्या हल निकलता है इस कश्मकश से निकलने का।

आर डी बर्मन का संगीत था, किशोर कुमार की आवाज़ और फिल्म आपकी कसम का ये गीत सुना आप सभी ने। और आज हमारा जो मौजू है थोड़ा सा भावनात्मक भी है और थोड़ा मुश्किल सा मौजू भी है और हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है ये, लेकिन क्या करें, हकीकत का सामना तो करना पड़ेगा ना। आज का जो समय है ना, उसमें एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, जो हमारे खून के रिश्ते हैं उसके बावजूद हमारी आपस में एक दूसरे के लिए अजनबियत जो है वो बढ़ती जा रही है। घर में ही ले लीजिए, चाचा चाची, ताया ताई, भाई बहन, सभी एक ही परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे बैठे होते हैं, फिर भी उनके बीच भावनात्मक दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये दूरी भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक है। हम अपने अपनों को खोते जा रहे हैं और उन्हें अपने अपने अजनबी बना रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि गलती किसकी है, कौन है यहाँ बेवफा।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। ये सफर है निशिगंधा का और हम आज बहुत ही अपनी खास बात कर रहे हैं, अपने अपनों के दिलों का हाल जानने की कोशिश में आज हम निकल पड़े हैं। देखिए ना, आज की जो व्यस्त जीवन शैली है, नौकरी की भाग दौड़ है, शहरों का अलगाव और फिर सोशल मीडिया का प्रभाव, इससे हमारे जो रिश्ते हैं ना वो कमज़ोर हो रहे हैं। रविवार की एक छोटी सी फैमिली पार्टी ही को ले लीजिए। किसी शादी का उत्सव में जब सब इकट्ठे होते हैं तो मेज़ पर चाय नाश्ता चल रहा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन बड़े लोग अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। अगर किसी ने पूछ भी लिया, बेटा नौकरी कैसी चल रही है, तो सामने से जवाब मिलता है, ठीक है चाचा, बस बात खत्म। कोई गहराई नहीं, कोई दिल से पूछताछ नहीं। ताई ने अगर बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछ लिया तो सामने से जवाब में एक औपचारिक मुस्कान आ जाती है। सब एक दूसरे को देखते हैं लेकिन देख नहीं पाते। क्या आपसी प्यार इतना हल्का होकर रह गया है? क्या हम अपने आप में सिमटते जा रहे हैं? मेरा कमरा, मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप, मेरी शर्ट, मेरा जूता। पहले हम अपनी चीज़ें बांट लिया करते थे, अब अपना अपना करने लगे हैं। क्या कहीं हम में बदलाव आ गया है? अगर है तो हमें फिर से बदलने की ज़रूरत है। प्यार की कहानी दो लफ्ज़ों की है तो क्यों ना उसे पढ़ा जाए, समझा जाए और अपने आसपास उसे आजमाया जाए।

आशा जी की आवाज़ में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप, और साथ में शरद कुमार की आवाज़ भी थी और अमिताभ बच्चन की भी आवाज़ आपको इस गीत में सुनने को मिली होगी। बात कर रहे हैं निशिगंधा में आज अपने अपने अजनबी हो जाने की। ये जो अजनबीपन बढ़ रहा है आपसे रिश्तों में, इसका एक तो सबसे बड़ा कारण जो नज़र आ रहा है वो है समय की कमी। लोग आज इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता जा रहा है। चाचा शहर के एक छोर पर रहते हैं तो ताया दूसरे राज्य में। मिलना सिर्फ फेसबुक पर वो जो हैप्पी बर्थडे वाली शुभकामनाएं हैं ना, उन्हीं तक सीमित हो गया है। दूसरा, आप समझिए कि आर्थिक असमानता भी एक कारण है। एक भाई की आय अच्छी है तो दूसरे की कम। इससे आपसी रिश्तों में ईर्ष्या, तुलना और जो है दूरी भी पैदा हो रही है। कभी कभी पुरानी बातें, संपत्ति के झगड़े या फिर शादी के लिए गए फैसलों पर भी मतभेद रिश्तों में दरार डाल देते हैं। बात सुनने में अच्छी नहीं लगती, पर यह सच है। हम आज किसी को भी समझना नहीं चाहते और बिना समझे ही सामने वाले के लिए धारणा बना लेते हैं, और सब बिगड़ जाता है जब हम उसी धारणा में जीने लगते हैं, बिना एक दूसरे को सुने, बिना किसी को समझे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय

हम लोग 1 MHz पर। ये निशिकंधा का सफर है जिसे लेकर मैं माधुरी हूँ आज की रात आप सभी के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं निशिकंधा में अपने अपने अजनबी की। जी हाँ, हर घर में ऐसा एक कश्मकश जो है वो आ ही गई है कि हम अपने अपने अजनबी होते जा रहे हैं। अच्छा, इसका एक पहलू ये भी है कि आज के युवा इस अजनबीपन को और बढ़ा रहे हैं। वो अपने दोस्तों और सोशल सर्कल से ज़्यादा जुड़ गए हैं, घर वालों से ज़्यादा उन्हें अहमियत देते हैं। घर पर चाचा चाची आएँ तो बस हेलो हाय और बाय। उनकी समस्याएं यानी कि चाचा चाची की बातें, उनकी समस्याएं, उनके अनुभव सुनने के लिए आज के युवाओं में इच्छा ही नहीं रही है। पर सारा दोष जो है युवाओं पर नहीं डाला जा सकता। शायद हमने भी कहीं चूक कर दी है। रिश्तों से ज़्यादा महत्व उनके अपने समय को दिया, उनके दोस्तों को दिया। जब समझने की ज़रूरत थी तब शायद हम ही चुप रह गए, और या फिर हमने ही रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं दी या उन्हें उस तरह से समझाया या उन्हें बताने की कोशिश नहीं की कि रिश्ते जो हैं हमारे कितने मूल्यवान हैं और इन्हें हमें बचाना है। तो कहीं ना कहीं किसी एक पे गलती थोपना गलत होगा। ये हमारे आपसी समझ का ही परिणाम है कि आज हम अलग-अलग होते जा रहे हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। ये सफर है निशिगंधा का और आज निशिगंधा में हम बात कर रहे हैं अपने अपनों की, जिनसे हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो दूर जाने से पहले इन रिश्तों को मना लेना चाहिए, अपने पास बुला लेना चाहिए और समय निकाल कर अपने, मतलब जो अपने हमारे अपने हैं, उनके लिए सोचना चाहिए और ऐसे रास्ते निकालने चाहिए कि ये जो दूरियां हैं ये घट जाएं, कम हो जाएं।

हमारे अपने भी हमारी जिंदगी में इसी तरह से शामिल हैं उन्हें रोक लेना है उन्हें जाने नहीं देना है हमारे छोटे-छोटी सी कोशिशें रिश्तों को फिर से जोड़ सकती हैं अगर परिवार में पार्टी हो तो मोबाइल बंद करके बैठ के देखिए पुरानी यादों को ताज़ा करिए एक दूसरे की समस्याएं सुनिए और अगर ज़रूरत पड़े तो बिना शर्त मदद के हाथ बढ़ा दीजिए एक छोटे कदम से बड़ा बदलाव आ सकता है बच्चों को बचपन से ही रिश्तों के महत्व को सिखाइए रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से मजबूत होते हैं आखिरकार जीवन की यात्रा में हम कितने भी आगे बढ़ जाएं अपने अपनों का साथ सबसे बड़ा सहारा होते हैं अगर चाचा चाची ताया ताई अजनबी बन गए तो फिर अपना कौन बचा समय है कि हम इस अजनबीपन को तोड़ डालें और फिर से अपने बने अपने अपने अजनबी बनने की ये जो प्रक्रिया है ना ये धीमी जरूर है लेकिन बहुत ही खतरनाक है इसे रोकना हमारे हाथ में है परिवार की गर्माहट तभी बनी रह सकती है जब हम एक दूसरे को समय दें सम्मान दें और प्यार दें वरना भीड़ भरे घर में भी हम अकेले और अजनबी महसूस करते रहेंगे

निशिगंधा का ये सफ़र कहता है कि आपसे यहीं इजाज़त ले ली जाए। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार, बने रहिएगा आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग है और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी

अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. और अब ये सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स. आपके साथ आज की रात मैं हूँ माधुरी.

बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग ये रहा और ये गीत था फिल्म दो आंखें बारह हाथ से लता जी की आवाज और वसंत देसाई का संगीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये प्यारा सा जोशीला सा गीत सुना आपने गीता दत्त महेंद्र कपूर मुकेश मन्ना डे और साथियों की आवाज में फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म श्री 420 से

हेमंत कुमार की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म जाल से। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म आजाद से, आवाजें लता और उषा मंगेशकर की।

आप सुन रहे थे गीत लता जी की आवाज में फिल्म तीसरी कसम से और शंकर जयकिशन का संगीत था। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म चोरी चोरी से लता जी और

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये जो सफर आपने तय किया, इसका नाम था गीत सुहाने। बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत हम लेकर आते हैं इसमें आपके लिए, और एक आखिरी गीत इस सफर का बचा हुआ है, वो भी हम आपकी नज़र कर रहे हैं। और ये गीत है फिल्म हावड़ा ब्रिज से आशा जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और गीत आपके लिए।

गीत सुहाने का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। भारत ने कल नेपाल की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 10 बंदी परिवहन ट्रक भेंट किए। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये वाहन नेपाल की सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संचालन क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इस वक्त हम लेकर आते हैं कार्यक्रम रात सुरमई। रात सुरमई लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। किसे आए नजर अंधेरे में, हाँ कोई है मगर अंधेरे में, एक दो पल को फिर से उभरा है एक दिया डूब कर अंधेरे में, इससे आगे जमीन हो शायद, सोच कर पांव धर अंधेरे में।

मोहब्बतें उल्फतें शिकस्ता शिकस्ता दिल हसरतें शिकस्ता रहे सहे ख्वाब टुकड़े टुकड़े बची बची लज्जतें शिकस्ता करार के लम्हे टूटे टूटे सुकून की सांतें शिकस्ता

धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। लो गले पड़े कांटे क्यों गुलों की ख्वाहिश की। लो गले पड़े कांटे क्यों गुलों की ख्वाहिश की।

मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात

मिनट और हो गए हैं पूरे 30 सेकंड। बात लफ्जों के दरमिया रख जा, अक्ल वालों का इम्तहान रख जा। रूठ कर सबसे जा रहा है तो दिल में झूठी तसल्लियां रख जा।

जगजीत सिंह की आवाज में वो बात है कि हर दिल की बात अपने आप ज़बां पर आ जाती है। ये बहुत अच्छी सी एक ये बात है जो आप तक पहुंचा रही हूं कि जो मेरा वो उसका गम हो, ये कैसे हो सकता है। शामो सहर का एक मौसम हो, ये कैसे हो सकता है। दिल में कुदूरत, जहन में नफरत और जुबां अंगारा हो, फिर लहजे का सुर मध्यम हो, ये कैसे हो सकता है। जज्बों का मासूम परिंदा उड़ता है हर मौसम में, रंजो खुशी में आंख न नम हो, ये कैसे हो सकता है। और दिल की बात समझने वाला कोई तो होगा, शहर ये सारा शहरे अजम हो, ये कैसे हो सकता है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और ये सफर है रात सुरमई का समय हो गया है 2:41 और पूरे 47 सेकंड्स

चंदन दास की आवाज में ये गजल जरूर पसंद आई होगी आप सभी को। दरवाजा बंद रखने से भी क्या मिला मुझे, आवाज दे रहा था तेरा रास्ता मुझे। दिल पे वही है बोझ, वही सुबह शाम है, फिर भी ये साल जाने क्यों अच्छा लगा मुझे। मैं खुद ही जानबूझ के नजरें चुरा गया, वरना तेरे

मखलूक ने टोका तो था मुझे, अगलों की तरह उसको भी दावा था साथ का, ये और बात आज वो तन्हा लगा मुझे।

इसी के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं समाप्त होता है और दीजिए विदा माधुरी को. आप सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल. अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता

1200 किलोवाट होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM गोल्ड चैनल 16.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग हमराही कार्यक्रम में गीतों के साथ नमस्कार।

वाक्य में ही दोस्तों, जिसने इस दिल को और दिल के जज्बातों को समझ लिया, उसने सबका प्यार पा लिया। रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं लोग किसी से बात करते हैं, कोई प्यार से बात करता है तो कोई गुस्से से, लेकिन आपकी मीठी वाणी सुनने वाले के दिल को जीत लेती है। दिल एक मंदिर फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। हसरत जयपुरी की रचना थी और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ पत्थर के सनम फिल्म से, ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अख्तर रोमानी की रचना थी और दोस्तों ये गीत था और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और अब वो गीत जो आपसे मैंने कहा था, धुन पहचान लेना आपने, पत्थर के सनम फिल्म से ये गीत।

0: जब कोई इंसान किसी को चाहने लगता है तो देखा गया है कि उसे उसकी वैल्यू ही सब कुछ लगने लगती है, उसके बिना कुछ भी नहीं लगता।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

संजोग फिल्म से ये गीत था लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से, एस एच बिहारी की रचना है और ओपी नैयर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

शुक्रिया तो कहना ही पड़ेगा जब आपकी जिंदगी में इतनी कोई अमूल्य चीज आ जाती है। और अब एक और गीत सुनने का आनंद उठाते हैं।

संगम फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की रचना थी, संगीत शंकर जयकिशन का।

सूरज फिल्म से ये गीत आपने सुना, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। और अब अगला गीत, ये रात फिर ना आएगी, फिल्म से आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है, SH बिहारी की रचना है और OP नैयर का संगीत।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे जंगली फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत। पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, अपनापन कुछ इतना ज्यादा है आपसे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधानों के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताभाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताभाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और

विदर्भ में आज भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिनों तक दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। और इस कार्यक्रम में आप सभी को गीतों को सुनवाने के लिए आ गई हूँ मैं वंदना चुग। नमस्कार।

किसी की आवाज, किसी की बात आपके दिल की इतने करीब हो जाती है कि आपको लगता है ये हमारे जीने की वजह बन गई है। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना बरसात की रात फिल्म से। साहिर लुधियानवी की रचना थी और रोशन का संगीत। अगला गीत आपकी खिदमत में, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे इस जिंदगी हम दूर से पहचान लेती हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में, कैफी आजमी के बोल थे और मदन मोहन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे अंदाज फिल्म से किशोर कुमार का गाया हुआ, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

दोस्तों, हर दिन की शुरुआत हमारे लिए नई होती है और हम सोचते हैं कि आज हम कुछ नया करेंगे और नया करके दिखाएंगे और अच्छा ही सोचेंगे।

0: दूर का राही इस फिल्म से ये गीत था किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में इरशाद की रचना थी और किशोर कुमार का संगीत
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
0: अरुणिमा इस कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर

घर संसार इस फिल्म से ये गीत था मन्ना डे और आशा भोसले का गाया हुआ मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रवि का संगीत अब अगला गीत जिसमें ये कहा गया है कि आप कहीं भी चले जाएं आपका दिल वहीं बसता है जहां आप रहते हैं वैसे भी आप कहीं भी घूमने चले जाएं लेकिन जब अपने घर आकर जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता।

दोस्तों, फिल्म का नाम तो आप जान ही गए होंगे, श्री 420 फिल्म से ये गीत था। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत, आवाज वही जानी पहचानी मुकेश की थी। अगला गीत आप सुनेंगे कोहरा फिल्म से किशोर कुमार का गाया हुआ। कैफी आजमी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और आप गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ। दोस्तों ये तो सच बात है ना कि जब इंसान के हौसले बुलंद होते हैं तो मंजिलें खुद ही कदम चूम लेती हैं।

दोस्तों, हम समझते भी हैं और जानते भी हैं कि हर इंसान के ज़िंदगी में दुख सुख के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन सब को हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं और परवाह किए बिना ही उन जिंदगी में आए थपेड़ों को सहन कर लेते हैं। और फिर जब वक्त बीत जाता है तो हमें खुद को भी एहसास होता है कि हम तो बहुत बड़े मंजर से गुजर गए। आपको बता दें, मेरी जंग फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। दोस्तों, बहुत से गीत हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देते रहे हैं और हमें देते भी रहेंगे। और बहुत बार किसी का मूड ठीक नहीं होता तो वहाँ भी हमें गीत ही याद आते हैं। और अगला गीत शोर फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों का गाया हुआ है, इंद्रजीत सिंह तुलसी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हर गीत में कोई ना कोई बात छिपी होती है और यहाँ भी ये गीत हमें कह रहा है कि हमें अपना स्वभाव ऐसे सम रखना चाहिए कि हर कहीं हम अपने आप को ढाल लें।

0: भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी भरोसे पर आधारित होगा। ये दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर में 92 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता के एलिमिनेटर मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिसका कोई नहीं होता, कहते हैं ना ऊपर वाला है और वही उसकी पालना करता है। वैसे तो सभी की पालना वही करता है, वही चिंता करता है। जब कोई सहारा नहीं होता तो वही किसी ना किसी रूप में आता है, बस बुलाने की ही देर होती है।

0: जन की सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: भोर सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ। दोस्तों, हर इंसान अपने व्यवहार से ही पहचाना जाता है, इसलिए अपने कदमों के निशान आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे ही छोड़कर जाएं।